कहां करे कोई बेचारा, प्रभु मेरे का बड प्रताप। जिस मिले मन हुए आनंद, सो सतगुर कही है, मन की दुविधा बिनस जाहे, परम पद लहिया। बलिहारी गुर अपने, द्योहारी सदवार, जिन मानस ते देवते किए, करत ना लागी वार। करत ना लागी बार। परम सम्मान योग चवर शतर दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर शोभायमान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों, अज किन्ने भागां वाले ओ शरीर ने जेड़े मेरे धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी दे अंदर ए जो ईसवी सन है इस दे 1998 दा ए साल, इनू बस डेढ़ घंटे बाद पौने दो घंटियां बाद आपां अलविदा कर देना है। ते उस 1999 नू जी आया कहना, जिस दा खास करके सिख जगत दे अंदर बड़ा चाह ते उमा। दो पक्ष ने गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी अंदर, अज ओ भी लोग होणगे जिहड़े नशे विच गुट होणगे, जिहड़े नच टप रहे होणगे, पर कुर्बान मेरे गुरु नानक साहिब तेरे तो लोग इस वकारां दी अग विच सड़ रहे ने। मेरे साहब तू अपने नूं बांह दे के इस अग विचों बाहर कढ ले। हजूर ने बाणी विच क्या, अगन सागर बूढ़त संसारा, नानक बांह पकड़ सतगुर निस्तारा। कुर्बान जाइए उस गुरु तो जिन्हें सानू बाणी दिती, जिसने कृपा करके सानू साध संगत दिती, जिस गुरु जी ने कीर्तन दी दात दिती, नाम दी दात दिती। ते गुरु रामदास जी ने इसे समय नूं तक एक गल कही सी कि गुरु कोल भी केवल ओह बह सकदा है जिदे अंदर सच्यार अंदर कोई सत दी कणी है, जां जो गुरु नूं इश्क करदा है। ते उत्थे तां ही हजूर ने कहा सी कि कूड़ियार कूड़ियारी जाए रले, सच्यार सिख बैठे सतगुरु पास। गुरु मेहरामत करे, मैं अर्थ कर रहा अपने उस प्रसंग नूं। वैसे मैं अज कुछ लाना अगे तोरना जो पिछले कई दिनां तो इस स्टेज तो आपां गुरु कलगी वाले दा पुरब मना रहे हैं। गुरमुख प्यारे प्रबंधकां वल्लों हुक्म भी सी कि जदों गुरु गोबिंद सिंह जी दा पुरब आवे ते उस सरबंस दानी दियां रज के कथा कहानियां कीतियां जाण। खास करके मेरे बुजुर्ग बैणीवाल साहब उन्हां वल्लों ए मैं हुक्म कह सकना उन्हां तो छोटा वा, आओ उस गुरु दियां भी आपां बातां अज करनियां ने जिथे अज 99 दा ओ साल भागां वाला आ रहा है। अज तो 300 साल पहलां आनंदपुर केसगढ़ साहिब जिथे अज साडा तख्त है, उस पहाड़ी दी चोटी ते खलो के हजूर ने हिंदुस्तान दे उच जातियां नूं ते जालम हाकमां नूं एक गल कही सी, जां की जात गोत कुल माही, सरदारी ना भई कदाही, इन्हीं को सरदार बनाऊं तबे गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। इसे वक्त ही मेरे साहब ने कृपान कढ़ के पहाड़ी ते कहा सी कि कदी समा आवेगा कि रत्न के संग रंक लड़ाऊं, शेरों के संग पेट पढ़ाऊं,
کہنے لگے سوا لاکھ سے ایک لڑاؤں تب ہے گوبند سنگھ نام کہاؤں. دھیان رکھنا اے آواز اج تو 300 سال پہلا آنند پور دی دھرتی تو اٹھی تے اس آواز نو کوئی دبا نہیں سکیا. گرو گوبند سنگھ مہاراج کرپا کرن 99 آپا تکنے پئے ہاں اینو جی آیا کہہ رہے ہاں پر پیاریو اے 300 سالا تا تکنے ہاں 400 سالا شاید سادے وچوں کوئی تکے تے آئے سال جا اے سماں تاں ہی سبل ہے جے کتے گرو گوبند سنگھ دے چرناں وچ اج ارداس کر دیئے کہ میرے داتیا تیرا اے 300 سالا خالصے دا ساجنا پرب آ رہا ہے تو کر میرا مت اینا سکیاں کردیاں وچ امرت دی چڑی لا دے تو وچھڑیاں نو ملا لے کوئی آنند پور دی دھرتی ہے جتھے کدی کچھ کاغذ تے لکھ کے چلے گئے سن بداوا دے کے پر اج کرپا کر

करतारपुर टेक उदासी सकल उतारा पैर संसारी कपड़े मंजी बैठ किया अवतारा सोदर आरती गाविए अमृत वेले जाप उचारा। धर्मशाला कैम हो गई। बाबा बुढ़ा भी पिंड रमदास तो अपने माता पिता न रमदास चले गए उथों करतारपुर पहुंच गए। गुरु नानक साहब की कृपा अथाह वर्षी। संखेप अर्ज करा जितन अंतले दिन गुरगद्दी भाई लैने नू मिलनी है ते जन्म साखी वाले ने कुछ बचन बड़े प्यारे सांभे ने। ओ कहिंदा गुरु नानक साहब ने तानका वाला रूप बनाया हाथ विच छोटा पकड़िया लम्मा चोगा पा के शिकारी कुत्ते लै के जंगल नू तुर पे पिछे संगता तुरिया। ओ कहिंदा लिखदा जन्म साखी वाला पहला हजूर ने खीरिया की बरखा की सोने चांदी की बरखा हुई रुपया की बरखा हुई लोग पैसे लैके पिछा मुड़ते रहे इस साखी विच भी रमजे आखीर ते मुकदी गल की एक भाई बुढ़ा ते दूसरा भाई लैना इन्हां ने ना हीरे देखे ना मोती तके बस नीवी पा के गुरु नानक जी दे पिछे पिछे तुरे गए। सतगुरु रुक गए ते बाबे बुढ़े वल इन्हां ने छोटा उघारिया ते ओ तां इत्थों तक लिखदे ने बाबा बुढ़े जी दे मोढ़े दे उत्ते सतगुरु ने डांग भी मारी ते कहन लगे बुढ़िया मैं तैनू कहना अपने घर नू चला जा कि तू अपने घर जाएगा नहीं लोग दौलत लैके मुड़ गए तू अजे भी पिछे तुरिया उन्ने। ते भाई बुढ़े दा अगो उत्तर सी दात्या जिन्ना लोकां दे घर ने घरां वाले तां अपने घरां नू चले गए मेरा घर तां उदण दे मुक गया सी जिदन दा तू गुलवकड़ी विच लै के प्यार दिता है घरां वाले घरां नू चले गए बुढ़े दा ते घर ही गुरु नानक दस तेनू छड़ के केड़े पासे जाऊं। जदों इन्ने शब्द कहे ना सतगुरु ने बुढ़े नू फिर छाती न लाया कहन लगा दात्या तेरे तो विछड़ के नहीं मैं रह सकदा उत्थे जिहड़ी पंक्ति मेरे

ओहम पातिक बिना सह गुर अमरदास परसी सिद्ध साधक आशा सह गुर अमरदास परसी ध्यान लइए पौ मुकह गुर अमरदास परसी अपौ लभै गौ चुकै एक बिन दुगण जो तो रहै जा सुमंत्र मानवैल है जाल पाप दार्थ इतड़े गुर अमरदास डिठ मिले कन हर बूंद बसोरु मावल कुसुम बसंत गणंत नयावे रव सस किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावे रुद्र त्यान ज्ञान सतगुर कै कब जन पल उन्हें सो गावै

परम सम्मान योग जुग जुग अटल सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाई मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों हजूर दी पावन पवित्र इलाही बाणी दा कीर्तन और गुरमत विचारा आप जिया ने सत्कार योग भाई साहब भाई जगजीत सिंह जी होरां पासों सरवण कीतियां ने। कल दा दिन जो बतीत होया है, कल दे दिहाड़े धन गुरु अमरदास महाराज तीसरे गुरदेव दा गुरगद्दी नशीनी पुरब से ते गुरु अमरदास महाराज जी दे इस पुरब नू आपां अज मना रहे हां। गुरु नानक साहब जी दे इस घर दे अंदर जदों आपां इतिहास नू गुरमत नू पढ़ने हां ते एक चीज बड़ी विलक्षण सानू जिहड़ी नजर आउंदी है, इत्थे गुरु दी कृपा ते निर्भर करदा है। 7 साल दा बजुर्ग बाबा भी जे किते गुरु के चरणा भी जुड़ के सेवा करे ते जिस समय लोग कहिंदे ने 70-72 साल दी उम्र विच बंदे नू सूझ कोई नहीं शब्द वरतदे ने, ए 70-72 गया है। 12 साल गागर ढो के 72 साल दा बजुर्ग भी सिख तो गुरु बन सकदा है। यही विलक्षणता कि इत्थे 5 साल ते 3 महीने की बाल उम्र गुरु हरकृष्ण साहब जी वह भी गुरु बन सकते ने, ते कृपा गुरु करे तो 72 साल का बजुर्ग भी गुरु बन सकता है। आओ गुरु अमरदास जी दे पावन पवित्र इतिहास की और बाणी की विचार आपने करनी है, जड़ा अज का दिन गुरगद्दी पुरब आप मना रहे हैं। इस दी विचार इस दिन दे संबंध विच गुरु कृपा नाल आपां विचारने, कृपा करके जितने भी बैठे हो ना एकाग्रता जरूर बख्शिया जे। कोशिश करो इस खिंडे हुए मन नू गुरु अमरदास जी दे चरणा विच अज टिका दईए। जे तां बुद्धि तारक केवल तर्क करन वाली नाल सुणांगे ते याद रखना ओ कहा होया केवल तर्क दी बिरती वाला लगेगा, ते जदों प्रतख गुरु नू हाजर नाजर जान गुरु के बचन सरवण करांगे ते सतगुरु गुरु अमरदास दी कृपा वरसेगी। विचार आरंभण तो पहला सतगुरु की बख्शिश कीती हुई गुरु फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बाबा अमरदास जी का जन्म पिंड बासर के जो अजकल जिला अमृतसर के अंदर है सन

पासे प्रहलाद ने सड़के सवाह हो जाने ते तन गुरु ग्रंथ साहिब वचन करदे ने, देखो मेरे परमेश्वर दी खेड, जिन्ने देवते दा वर लिया सी कि मैनू कदी अग साड़े ना, ते जदो अग दियां लाटां निकलियां खोल का ता सड़के राख हो गई, ते जेड़ा अंदर प्रहलाद बैठा सी ओनू वाहगुरु ने तत्ती वाह ना लगन दित्ती, ओनू सेक नहीं लग्या। ते कहिंदे ने उस दिन तो बाद जदो होलका सड़ गई ते हिंदुस्तान दी धरती ते हर साल अग मचा के होली वाले दिन होलका दी राख उड़ाई जांदी सी साड़ के, एदा मतलब सी कि अज दे दिन एक सच दे पुजारी दी जित होई, सच नू पूजन वाले नू अग भी ना सार सकी, ते दुनिया दे बंदे नू खुश करन वाले नू भावे ओदे कोल देवते दा वर सी ओनू अग ने साड़ के सवा कर दिता। गुरु ग्रंथ साहिब च शब्द हुंदा महाराज कहिंदे संडा मरका जाए पुकारे, एदा अर्थ भगत नामदेव जी दा शब्द है। संडा ते मरका दोना ने जाके हरनाक्ष कुल पुकार कीती, पढ़ा नहीं तेरा पुत्र पढ़दा नहीं, हम ही पच हारे असी थक गए हां, क्योंकि राम कहे कर ताल बजावे, ताड़ियां मार के राम नाम जपदा, राम कहे कर ताल बजावे चटिया सबे बिगाड़े, इन्हे ता नाल दे साथी भी बिगाड़ दिते ने। किन्ने जदो इन्नी गल कही फिर मां आई, कह लगे मां ने कहा बस दा बस कीनी सब राजे, पुत्र सारी धरती तेरे बापू दे अधीन है, बिनती करे पटरानी मेरे बच्चिया तू गल मन लै, छड़ दे तू राम नाम नू, कगे लिख दे ने सहित पुत्र प्रहलाद कहा नी माने, तिन तो औरा छानी, सच दे पुजारी ने मां नू भी जवाब दे दिता, मां दे बचन मन्ने नहीं, पुत्र प्रहलाद कहा नहीं माने, तिन तो औरा छानी। अगे कहिंदे दुष्ट सभा मिल मंत्र उपाया, हुण दुष्ट इकट्ठे होए इन्हां ने सलाह कीती, करसे औद कनेरी प्रहलाद नू आपां खत्म करने, ते साध संगत अगली पंक्ति वल ध्यान देना जिहड़ी मैं अर्ज करनी चाहना। दुष्ट सभा मिल मंत्र उपाया, करसे औद कनेरी, साहब कहिंदे गिर तार जल ज्वाला भय राख्यो, चार शब्द कह गिर, गिर दा अर्थ पहाड़, तर तर दा अर्थ रुख, जल दा अर्थ दरिया सी पानी करने आ, गिर तर जल अगे वे ज्वाला, ज्वाला दा अर्थ अग, गिर तर जल ज्वाला भय राख्यो, राजा राम माया फेरी, मेरे वाहगुरु ने एहो जिहा कौतुक वरता दिता, ना पहाड़ ना रुख ते ना पानी दियां लहरां ते ना ही उनू बलदी होई अग साड़ के सवा कर सके। उस तो बाद ए खेड चल पई, ए होली इथो तक आ पहुंची, वख वख इलाकियां विच ढंग मनाण दे वख वख ने, किते लठ चला के होली मनाई जांदी ए, किते बजुर्गां उत्ते चिक्कड़ सट के होली मनाई जांदी ए, किते कालक सट के होली मनाई जांदी ए, किते एक दूजे उत्ते रूंग रूंग अपना रंग सट के खरूद मचा के होली मचाई खेडी जांदी ए। ते धन गुरु ग्रंथ साहिब जी ने एक वचन कहा, देखिया भी ए लोग तां सच दी गल नूं भुल गए ने, केवल एक दूजे दे उपर रंग पै सड़दे ने, गुलामी दियां जंजीरां इन्हां दे गले विच पईआं ने, इन्हां नूं रब वाहिगुरु चेते नहीं, गुलामी भी जीवन बतीत करदे ने। ते मेरे दाते ने फिर क्या कहन लगे, सजना जे तू रंग सच नहीं चाहना है ते आ मैं तेनू सचा तू रंग दसा, रंग केड़ा चाड़ना है, केड़ा रंग सटना है। गुरु नानक साहिब दे बचन असी पढ़ने आ ते हर एक नू ए शब्द चेते ने, साध संगत कोई अंदर ऐसा नहीं जेड़ा रंगण तो बिना खाली होवे, हर एक दा अंदर रंगया, अंतर सिर्फ इतना किसे दा कुसंबे दे रंग न रंगया, किसे दा मजीद दे रंग न रंगया। धन गुरु ग्रंथ साहिब च साहिब कहिंदे ने कोई अंदर रंगण तो बिना नहीं, कईयां दे अंदर दे चोले लालच दे रंग विच रंगे ने, लालच दे रंग विच रंगे हुए चोलियां नेड़े कदी भी वाहिगुरु दी कृपा नहीं, ते कई चोले ऐसे ने जिहड़े नाम दे रंग विच रंगे ने, ते गुरु नानक साहिब कहिंदे ने इहो जिहां दे चरणा दी धूड़ मैनूं मिल जावे। सतगुरु ने वचन कीता, कहन लगे ए तन माया पाया प्यारे, लीतड़ा लब रंगाए, मेरा कंत ना भावे चोलड़ा प्यारे, ए चोला मेरे वाहिगुरु नूं।

अगले बचन महाराज 40 किवें चलिया जांदा है। ते सतगुरु ने फिर होर क्लियर कर दिता, कहन लगे गुरसिख मीत चलो गुर 40, जो गुर कहे सोई भल मानो। हुण देखो साडा मन अनेकां तर कर दे, मैं कहना गुरमत ते चलन चलना होवे ते सब तो पहला सब्जेक्ट जां सब तो पहला उपदेश ही हुक्म मनना है। कल भी ये बेनती कीती सी ते साहब ने शब्द वरते गुरसिख मीत चलो गुर 40, जो गुर कहे तर करके नहीं उन भला करके मन ले, जो गुर कहे सोई भल मानो, हर हर कथा निराली। दूसरा प्रमाण हजूर दी बाणी विचों, सिर्फ मर्यादा तो पहला ये बेनती करनी चाहना वा कि ये मत समझियो किसे प्रचारक दे ठोसे हुए शब्द, मत समझिए किसे बंदे दे अपने कोलो मन घट शब्द। जो गुरु ग्रंथ साहिब ने कहा असि शब्द की रोशनी भी जी के देखिए कि गुरमत नु कमाया किवें जांदा है। कृपालू सतगुरु जी ने एक होर प्रमाण दिता है, ये शब्द आप पढ़ दे ते शब्द आरंभ हुंदा है कि कोई भी गुरु का सिख दिसे, ते मैं अगे चल के बेनती करनी है कि सिख दी रहत की है, संत दी रहत की है, ब्रह्म ज्ञानी दी रहत की है, भगत दी रहत की है, ते उसे रहत नू परपक करान दे लई मेरे दातार ने कृपा करके खंडे बाटे दे अमृत दी दात दे के सानू पांच ककारां दी रहत दृढ़ कराई ते चार बज्र करैतां तो बचाया सी। आओ आपां बाणी वल चलिए थोड़ा जिहा, साहिब दा एक शब्द असी पढ़ने के हजूर ने उस शब्द दा सरलेख दिता है गुणवंती। ये तीन शब्द इकट्ठे हुंदे ने, एक सुचजी, एक कुचजी, ते तीसरा शब्द हुंदा है गुणवंती। ते उस गुणवंती शब्द दे अंदर हजूर ने यही सवाल कीते ने, उस शब्द आरंभ हुंदा है कि जो दिसै गुर सिखड़ा तिस निव निव लागो पाए जियो। अर्थ बड़े स्पष्ट ने कि जदों कोई गुरु का सिख मिले ते साहिब कहिंदे मैं झोके ओहदे पैरां नूं हथ लाना वा, ओहदे चरणां दी धूड़ मस्तक ते लाना, ते देखो सानूं उत्तर मिलेगा कि गुरु दा पल्ला केवल हुक्म मन के फड़िया जांदा। कहिण लगे जो दिसै गुर सिखड़ा तिस निव निव लागू पाए जियो, आखा बिरथा जी की। आखा बिरथा, बिरथा दा अर्थ हुंदा अंदर दी पीड़ा, अंदर दी लोड़, अंदर दी तड़प। कहिंदे मैं अपने अंदर दी बिरथा दसना पिया वा, आखा बिरथा जी की। गुर सज्जन दियो मिलाए जियो, हे गुरु के सिखड़े गुरु के सिखा, तेनू गुरु मिले है ते मैं तेरे चरणा विच अपने अंदर दी बिरहा दसना वा, मेनू कृपा करके गुरु सज्जन मिला दे। हो किते को जी तड़प होवे गुरु सज्जन नू मिलदी, आखा बिरथा जी की। गुर सज्जन दियो मिलाए जियो, फिर किन्ने सोई दस उपदेशड़ा, मेनू ओ उपदेश दस, मेरा मन अनत ना काऊ जाए जियो। जेड़ा मन रोज तड़पदा भजदा पिया एक हजार उपदेश सुना दे, मेरा मन किसी दूजे पासे जाई ना। कहन लगे फिर अगली तुक है कि जे मेनू एहो जिहा उपदेश दस दे ए मन अनत ना काऊ जाए जियो, अगली तुक ए मन तै कू देव सा, मैं अपना मन तेनू दे दिया, मैं मार्ग देखो बताए जियो, मेनू दस ता सही मेरे गुरु दे घर नू रस्ता की हो जांदा है। किवें तुरना मैं गुरु दे मार्ग ते, ते मैं बेनती करा ए शब्द केवल गुरु जी दे अंदर दे आम कवियां वाले ख्याल नहीं, ए तुर आत्मा दी आवाज है। ते जे सिखा अज तू इना नू मन लवे किते तेरे मन विच ना तड़ पैदा होवे किते कि मैं अपने सतगुरु गुरु कलगी धर तेरे मार्ग ते किवें चला। उथे ता तरले करके पुछदे पए ने सानू मार्ग दसो, ते इथे गुरु के सिख रोज पुकार पुकार के कहिंदे ने लुकाई आ मार्ग गुरु दर नू जांदा, इस मार्ग ते चलना शुरू कर दीए। साहिब कहन लगे ए मन तै कु देवसा, मैं मार्ग देहो बताए जियो। हुण अगला वचन कीता, कहन लगे हकीकत एई कि मैं बड़िया थावां ते भटकिया वा, खौ आया दूरों चल के, मैं तक्की तो शरण आए जियो, मैं आसा रखी चित में, मेरा सब दुख गवाए जियो। तुसी कृपा करो मैं बड़ी दूर तो चल के आया। हुण देखो गुरसिख दा उत्तर की, जेरे गुरसिख नू पुछिया आप जुड़िया सी ओने उत्तर विच इको ही गल कही, कहन लगे भरावा जे

देखो जात पात के आधार जे असि कहने गुरु कलगी धर जी ने नीवियां नूं उच्चा चुकिया। मैं कहना गुरु ग्रंथ साहिब की शब्द की रोशनी तो दूर ना जायो, अमृत की व्याख्या बाणी से आधारित करो, क्योंकि एक चाल है कि बाणी नूं वख दसो ते अमृत नूं वख दसो, कि द्वार खड़ा करो कि अमृत वखरा है कि गुरु गोबिंद सिंह ने नीवियां नूं चुकिया। गुरु ग्रंथ साहिब किते बाबे कालू का नाम नहीं आया, तुसी बाणी पढ़न वाले हो, किते मां तृप्ता दे नाम नहीं आया। दो गुरु साहब ने कि जिन्हां दे बापू का नाम आया, एक ते गुरु अंगद साहब के पिता का नाम आया, फिर विसाया फेरू आन, फिर आनी फेरू दे रारे नूं औंकड़ लगी है, जे फिर आन पाठ करांगे तां अर्थ होएगा फिर दोबारा औंकड़ लगी है, फेरू आन बाबे फेरू दे पुत्र ने, जां बाबा तेज भान जी का शब्द एक ना है, किते बाबे कालू जी का नाम नहीं, मां तृप्ता का नाम नहीं, बेबे नानकी का नाम नहीं। अजकल दे कूड़े चुकते ने अपनी किताबां, असीं मैं कदी ग्रंथ शब्द उन्हां दी नहीं वरतदा, ग्रंथ केवल गुरु ग्रंथ साहिब सिख दे अंदर भावना होवे वह चुकते ने अपनिया महबूबा के नाम विच, अपने जिन्हां नूं प्यार करदे ने उन्हां शब्द मन पक्के दा ग्रंथ बना के गुरु ग्रंथ साहिब की बराबरी करदे ने। वह गुरु के सिखो क्यों जुगो जुग अटल है, इहदे विच फानी संसार वाले बापू का नाम नहीं, मां का नाम नहीं, पुत्रां दा नाम नहीं, इत्थे भैन दा नाम नहीं, पर एक गुरु नानक ते भरोसा करो कि जिन्नू लोग नीवा शूद्र कहिंदे सन, भाई लालो दा नाम गुरु ग्रंथ साहिब च सत वारी आया, एक वारी नहीं सत वारी गुरु ग्रंथ साहिब आया। ते जदों तुसीं शब्द पढ़ोगे कि जैसी मैं आवै खसम की बाणी तैसना करी ज्ञान वे लालो, सत वारी ना आया, ते मरदाना जी दा दो वारी ना आया। मैं बेनती करा कि जिन्हां नूं लोक मंदिर विच थां नहीं सन दिंदे, गुरु ग्रंथ साहिब च बाणी दर्ज करके मेरे गुरु अर्जुन देव ने खरमंदर विच थां दे दित्ती, कि ये गुरु नानक साहिब दी कृपालता नहीं, जेड़ी अज बचन कह सन इन गरीब सिंघन को देओ पातशाही, ये बचन कदी बाबे नानक दे पढ़ो कि नीचा अंदर नीच जात, नीची हुआत नीच, नानक तिन कै संग साथ, बटिया स्यों क्या रीस, जिथे नीच संभालियन तिथे नजर तेरी बख्शीश। मेरे गुरु कलगीधर सच्चे पातशाह ने आप सब नु पता है पंजा ने सिर भेट किते ने, ये भी महापुरुष दर्शा गए कि गुरु समर्थ है। हुण देखो फिर सर्व लोहे का बाटा लिया, पवित्र जल पाया, माता जीतो जी ने पतासे पाए ने, ना के माता साहब कौर जी तवारीख दे पन्ने पढ़ियो, असि कह दिने माता साहब कौर जी अमृत संचार तो बाद आए ने। हां ये भी मैं अर्ज कर दिया कि उन्हां नूं कुवारा डोला भी शब्द वरते हैं, ते जिस दिन अंदर फुरना पैदा होया सी कि मेरे घर भी संतान होवे, ते गुरु कलगीधर जी ने कहा सी भरे दीवान विच आयो ते तुहाडी अरदास कीती जाएगी। गुरमुख इसे तरह दीवान सजिया, पंज प्यारे गुरु की ताबिया भी सन, अमृतधारी सिंह जेड़े ने हजूर दी खजूरी विच बैठे सन, ते माता साहिब कौर नूं भरे दीवान विच कहा सी कि तेनू पुत्रां दी दात चाहीदी है, संसारी पुत्र कुछ कु समय दा रिश्ता बन गए, पुत्र दी मौत तो बाद पोतरा पैदा हुंदा, पोतरा खां लैंदा है, पुत्र केवल एक पीढ़ी तक रहिंदा है, मैं तेनू वह पुत्र तेरी झोली विच पा के जाऊंगा, जिन्नी देर तक सिख जगत रहेगा तेरे पुत्र की कदी मौत नहीं होगी, तेरा पुत्र तेरी गोद विच खेलती रहेगा। पुछया सतगुरु केड़ा पुत्र, कह लगे प्यारे भाई दया सिंह तुसी मेनू सिर दिता, मैं अपनी गोद विच छीने का अमृत तुहानू दिता, ते अज तो बाद तुसी माता साहिब कौर की गोद विच बह जाना। मैं कहना मां जेड़े प्यारे गुरु के सन तेनू उन्होंने मां कहा, तेनू इना उच्चा रुतबा दिता मां के उन्होंने तेनू पुत्र तुहानू पुत्र कहण दा सत्कार देण दा रब वालों गुरु वालों कृपा हुई। जेड़ी बेनती कर लगा खंडा बाटा ले है, सर्व लोह दा बाटा, दो धारा खंडा, पताशे शब्द भी वरते ने कि निर्मल जल है, वैसे दुध क्यों नहीं वरतिया, ध्यान दिया जे हजूर ने जल जो है ये निम्रता का प्रतीक है, जल जो है ये सुचमता का निर्मलताई का प्रतीक, निम्रता का प्रतीक है, पसासे छोटे वड्डे ने जदों घुल जाण तां केवल मिठास रह जाती है छोटे वड्डे दे।

जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की, हर नाखश फारे कर आज। फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी, छीनत वस्त्र दीन बहु साज। सुदामा अपदा ते राखिया, गणका पड़त पूरे तेह काज। श्री सतगुर सो प्रसन्न कल जुग होए, राखो दास पाठ की लाज।

अपरंपर अलख अपेव दृष्ट धरत तम हरण दहन अग पाप प्रणासन शब्द सूर बलवंत काम अर क्रोध विनाशन लोभ मोह वस करण शरण जाचक प्रतपालन आत्म रस संग रहन कहन अमृत कल ढालन सतगुरु सत सतगुरु तिलक सत लागे सो पैतरे गुरराज गुर जगत फिरन सिंह अंगरो राज जोग लहना करे अमे दिष्ट शुभ करे हरे अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सबे बल सदा सुख मन वसे दुख संसारे खोवे गुर नवनिद दरियाओ जन्म हम कालख धोवे सुकहु टल गुर सेविए एहन सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए।

कायम दायम है हमेशा एक ओंकार सत गुर प्रसाद वो जो एक है उसको उत्पत्ति हो रही है पालना हो रही है नाश हो रहा है ओंकार है वो जो ओंकार है वो सत है और वो जो सत है वो गुरु है एकाग्रता प्रदान करनी वो गुरु है चानना देन वाला है प्रकाश देन वाला है और वो जो गुरु है वो प्रसाद है दयालु है बख्शिंद है कृपालु है तो ये है मंगलाचरण और अगे आप वाक श्रवण करो एक दफा प्यार ना लाखो सतनाम अज का जिहड़ा पावन पवित्र वाक अमृत वेले आया वो भी उस हरिमंदर साहब उस अमृत सरोवर के संबंध च आया है जिसकी वकत के सताधारियों ने रज के बेहुरमती की थी जिसने रज के बेअदबी की थी रामदास सरोवर नाते इतनी गल तो स्पष्ट है कि अमृतसर नु गुरुआं ने वसाया गुरुआं ने बख्शिश दिती गुरुआं ने पवित्रता दिती और इस सारी दुनिया नु सहजे सहजे पता चल रहा है कि सिख जगत दे कितनी कशिश अमृतसर ले क्यों है सिख जगत दे अंदर तड़प इतनी अमृतसर दे ले क्यों है और मर मिटण दी भावना इतनी क्यों है मैं ते इतनी अर्ज कर रहा जेड़े शहीद हो गए उते काबू च है चारों पासे घिर गए पर खिमा करनी है खुल दिली नाल आजादी दे नाल शहीद होना आए ने ते जिस कौम ने इस तरह की खुली दिल नाल आजाद होन जो है शहीद होने लई आन खिमा करनी उस कौम नो गुलाम नहीं रखा जा सकता कौम जीवनी है जीवदे मनुख की यह पहचान है अंदर गर्मी आती है मैं फिर अर्ज करा मुर्दे की की पहचान ठंडा हो गया हाथ पैर ठंडे हो गए कलियां मलदे ने गर्माश आवे गर्मी आवे तो मैं अर्ज करा तलियां मलन की लोड़ ही नहीं थे गर्मी मौजूद है इतने जिंदगी मौजूद है सतगुरु का दिता हुआ वाक सतगुरु के दिते हुए वचन उन्होंने सूरवीरता अंदर खालसे दे इस ढंग की पैदा की हुई है ये जीवदी जागदी कौम है कबरां नू गुलाम रख सकते हो मुर्दियां नू गुलाम रख सकते हो जीवनी जागदी कौम नू तुसी गुलाम नहीं रख सकते ये हकीकत है बहुत वड्डी जो है सच्चाई है तो पावन पवित्र वाक आया है रामदास सरोवर नाते राम दे दासां दे सरोवर दे भाव गुरु रामदास जी महाराज का बनाया हुआ है सरोवर ते राम दे दासां दा सरोवर ओदे च जद इशनान कीता ओदे जो है नहाए हां जी अज तक जितने पाप कमाए सन ते पाप कहने किसनू कहोगे पाप पाप ते पुन दी बड़ी चर्चा है ते मैं करा इस्लाम जिसनों पाप कहिंदा है हिंदू धर्म उसनों पाप नहीं कहिंदा हिंदू धर्म जिसनों पाप कहिंदा उन्हों ईसाई पाप नहीं कहिंदे ईसाई जिनों पाप कहिंदे उन्हों यहूदी पाप नहीं कहिंदे हजरत ईसा शराब पी लेंदे सन गऊ दा मांस मुहम्मद साहब खा लेंदे सन मछली स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो है खा लेंदे सन मैदान जंग विच महाभारत की जंग विच श्री कृष्ण झूठ बोल लेंदे सन और उन्हें कहा युधिष्ठिर कह दे अश्वत्थामा हथो मर गए हुण किहनूं पाप आखोगे की पाप है किधरे कोई अवतारी पुरुष झूठ भी बोल लेंदा है किधरे कोई गऊ भी खा लेंदा है किधरे कोई मछली भी खा लेंदा है किधरे कोई शराब भी पी लेंदा है ते कहिंदे धर्म ते ओही है जिहड़ा निर्मल कर्म ते खड़ा होवे ते जिहड़ा धर्म है निर्मल कर्म ते नहीं खड़ा वह धर्म पखंड है सतगुरु ने आप कह दिता है कर्म है धर्म पाखंड जो दिसे तिन जम जा दासी लूटे निर्वाण कीर्तन गाओ करते का निमक सिमरत जित छूटे केड़ा धर्म पखंड है जो मलीन कर्मा ते खड़ा है कर्म धर्म जिन्हां कर्मा देते धर्म खड़ा है केड़े कर्मा देते फोकट कर्मा ते व्यर्थ दे कर्मा देते तो साहब कहने उते पखंड है पर हुण इत्थे निर्णा करिए निर्मल कर्म केड़ा फिर केड़ा पवित्र कर्म है किसनों निर्मल कर्म मनी है क्योंकि दुनिया भर दे अवतारी पुरुष ऋषि मुनि संत जना दे निर्मल
ਕਰਮ ਤੇ ਮਲੀਨ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਮਲੀਨ ਕਰਮ

अंतर सड़िए कहने एक वर भी दे गए माइया रब रजाइया। गुरु तेग बहादुर साहब की रचना तो निकले तो मैं देखदा जिस ढंग की सेवा इथों दी बीबियां कर लैंदियां ने इहदे स्पष्ट रूप में गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज का मैनू वर दिखाई देता है। पर गुस्ताखी माफ मसंद टोले नू कदी कदी वेख के उन्हां दी ईरखा नू वेख के ते गुरु तेग बहादुर साहब जी दे ए बोल भी याद आ जांदे ने ए मसंद जो अमृत सरीए कृष्ण अगन के अंतर सरीए। आ भी हकीकत उजागर हो जांदी है, आ भी बड़ी गल सामने आ जांदी है। गुरुदेव दे बोल एक पाठी की तरह पढ़ के मैं थानू सुनाया। तो पुजारियां ने कृष्ण जी की रूपरेखा इतनी बिगाड़ी, रासा रच रच के लीला मंदरां विच रच रच के मंदरां नू नाच गाणियां दा अखाड़ा बना दिता, कुंभी नरक बना दिता। किधरों भैरो की मूर्ति रखो पिलाओ शराब, किधरे काली की मूर्ति रखो अगों संडे भेट करो। निरत गायन तरह तरह के छल ते कपट मंदरां विच कट्ठे। तथमा करने एक होर अवतारी पुरश आए अज तो गलबन 2500 साल पहले। उन्होंने राम की मर्यादा की तो भरपूर किसी हद तक निंदा की, परे सुटिया, पर कृष्ण की लीला में भी तिलांजलि दे दी। आख्या नहीं, ये लीला भी नहीं चाहिए जो बंदे नू दुराचारी बना देवे, ये मर्यादा भी नहीं चाहिए जो बंदे नू जारो जारों ते मजबूर कर देवे। कहिंदे कानून है जी, कानून है, कानून जो तोड़ेगा उहदे नाल ये होवेगा। पर सवाल यह पैदा होंदा कोई क्यों मजबूर होया कानून तोड़न ते? सोचो तो सही, कानून बंदे की हिफाजत लई बनाया, तो कानून ही बंदियां नू मारन लगता है, फिर बंदा की करेगा, फिर मनुख की करेगा? कानून तो होंदा मनुख की हिफाजत लई, मनुख की इज्जत की हिफाजत लई, मनुख की संपदा की हिफाजत लई, मनुख की मान मर्यादा की हिफाजत लई कानून तो होंदा। इसलिए अगले का हक उस नू प्राप्त होवे तो कानून हक खोण लग पै, कानून ही बेइज्जत करन लग पै, कानून ही मारन लग पै, तो फिर मजबूरन मनुख उस कानून नू मारन लग पैंदा है जिहड़ा कानून उस नू मारे। मजबूरी हो जाती है, यह उसकी मजबूरी हो जाती है। तो दूर दृष्टि नाल महात्मा बुद्ध ने देखिया, थोड़े रूप च राम की मर्यादा मनिया जा रहा सी, कृष्ण की लीला का बड़ा जोर शोर से, ता आगमन होया महात्मा बुद्ध का। उन्होंने इन्हां दोवें अवतारी पुरुषों का जो असर से इस देश दे खत्म करने की कोशिश की, कृष्ण की लीला ने भ्रष्ट ते दुराचारी बना दिता है, राम की मर्यादा ने मर्यादा इतनी कड़ी कर दी है जिंदगी नरक बन के रह गई, दोजक बन के रह गई। शूद्र वास्ते कोई जगह नहीं, स्त्री वास्ते कोई जगह नहीं। जिथे वाल्मीकि रामायण के शंभूक नाम के जीवर के बारे लिखे उन्होंने फांसी से चाड़ दिता गया, शीशा पिघला के मार दिता गया। उत्थे तुलसी रामायण तुलसी इंज कहता है, ढोर गवार शूदर पशु नारी ए पांचो ताड़न हितकारी। इन्हां पंजां नू ताड़ दे रहो, मार दे रहो, किहड़े शूदर ढोर ढोल ना मारीए ते बोल नहीं, शूदर नू मारो, नारी नू मारो, गवार नू मारो, पशु नू मारो, तां ही ठीक रहिंदे नें, उंज नहीं, ताड़ दे रहो, मार दे रहो, कुट दे रहो। शूदरां ने तां हुण बगावत कर दित्ती, इह बोल सानू परवान नहीं। ते इस्त्रियां अजे भी शौक नाल घर घर विच रामायण यही पढ़ी जा रही, ढोर गवार शूदर पशु नारी ए पांचो ताड़न हितकारी। ते पति मारे कुटे ते ताड़ना करे ते इन्हां नू गिला भी नहीं करना चाहिए। आप ही पढ़दियां पईआं होई, बड़ी श्रद्धा नाल पढ़ रही हूं इस श्लोक नू, बड़ी श्रद्धा नाल तुसीं पढ़ रही हां, थां थां ते पढ़िया जा रहा है। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करां, राम की खुशक मर्यादा ते दुराचार विच समुचे देश की लपटी हुई जिहड़ी लीला सी रास लीला, इहदियां धजियां उड़ाइयां महात्मा बुद्ध ने। आख्या नहीं, ते नहीं परवान, राम की वह मर्यादा मैनू परवान नहीं जिथे शूद्र भजन बंदगी ना कर सके, राम की यह मर्यादा भी मैनू परवान नहीं कि स्त्री अगर कोई नाचण लावे तो उन्हें घरों कढ़ दे और अपने बच्चों नू एक आश्रम के जन्म दे ते बच्चे यतीमां की तरह पलन, लावारस प्यो दे होंदे आ। महात्मा बुद्ध के अंदर इतनी दया कठोरता तो कर नहीं सकते सन, तो इतना संजम तो भ्रष्ट लीला भी उन्होंने नहीं चाहिए सी। एक नवी जिंदगी का आगाज होया, लपेट देच भी बड़ी दुनिया आई इस देश की, बोधी बनना लोकी फख्र महसूस कर

प्रथम सनेमर गुरुदेव जी फतेह प्रवान करने वाहिगुरु जी का खालसा एकाग्रता प्रदान करने आज दा सोरठ राग दे अंदर धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा जो महान वाक आया है इस विच ऐसे विषय नु सतगुरां ने छोया है जो करीबन करीबन व्यापक है ते जगत दी समस्या है। मनुख दा कुछ लोड़ां दा जगत है, मनुख दा कुछ लोभ दा जगत है। ये जीवन दे ढंग दो ही ने, लोड़ां दे च जीवना, लोभ दे च जीवना, तीजा जीवन नहीं है। कोई जी रहा है लोड़ां की पूर्ति करने है, कोई जी रहा है लोभ की पूर्ति करने है। अक्सर 99% मनुखां दियां लोड़ां पूरियां हो जांदियां, लोभ किसे दा भी पूरा नहीं होता। लोभ दा स्वभाव है कि पूरा होता ही नहीं, होता ही नहीं। लोभी मनुख मरदे दम तक अधूरा ही रहता है, अधूरा ही रहता है। जगत दे च पूरन शांतमई जीवन उही जीवदे ने जो लोड़ां दे च जीवे, लोभ दे च नहीं। मैं फिर दोहरावां, लोड़ां पूरियां हो जांदियां ने, लोभ नहीं पूरा होंदा। लोड़ां दी पूर्ति करन दे फिर तीन साधन ने, बड़े ध्यान नाल सुनना, तीन साधन ने। पहला सिरमौर साधन किरत करने, दूजा साधन मंगना मंगता, तीजा साधन खोना लुटना। लोड़ां नूं पूरे करन दे ए तीन साधन है। किरत करके लोड़ां दी पूर्ति करनी, मंग के लोड़ां दी पूर्ति करनी, खो के लोड़ां दी पूर्ति, और कोई साधन नहीं। जो मेहनत करके लोड़ां दी पूर्ति करदे ने उहनां नूं कहिंदे ने किरती, जो मंग के लोड़ां दी पूर्ति करदे ने उहनां नूं कहिंदे ने मंगता, जाचक भिखारी, और जो खो के लुट के लोड़ां दी पूर्ति करदे ने उहनां नूं कहिंदे ने चोर, लुटेरे, डकैत। संसार दे च ए तिन्ने मौजूद ने। ए ठीक है, वड्डा तबका

0: हे परिपूर्ण परमात्मा सब कुछ तेरे कृत है, असी ते तेरे बच्चे हाँ, तू साडा पालनहारा है, पिता दी तरह है, असी तेरे बारक हाँ। हाँ जी,
1: राख लेहो नानक जन तुमरा, ज्यो पिता पूत किरपाला।
0: भावे लख गलतियां करदा है बच्चा, प्यो फिर भी कठोर नहीं आंदा, दया दे घर विच आके बच्चे नूं गल नाल लांदा है, सारियां दातां जो है देना है। हे प्रभु तेरे बच्चे आ, सदीवी गल नाल राई रख, इस तरह साडी पालना कर जिवें शरीरक पिता अपने बच्चे की देख रेख करता है। हे प्रभु हर वक्त अपने चरणा नाल जोड़ी रख, हर वक्त अपना प्यार बख्शी रख, ताकि असी हर वक्त तेरे नाल जुड़े रहिए। इतनी सेवा प्रवान, काफी समा हो गया, बाकी विचारा कल। दूसरी बेनती है, कल की कथा तो बाद दोपहर का दीवान हमेशा बाबा दर्शन सिंह जी का डेरा घनूपुर का लै, जिन्हां नाल दास का बड़ा पुराना प्यार सी, 30-35 साल तो बड़ा पुराना प्यार चलता आया। बड़िया खेडा मैं उन्हां दे नाल देखियां, उन्हां कोल देखियां बड़े अनुभव। तो हुण उन्हां दी थां ते बाबा गुरदेव सिंह जी ने 2 बजे तो लैके 6 बजे तक दा दीवान कल दा कन्नूपुर काले सजेगा। दास दे नाल जिहड़ी 3-4 जथे आए हुए ने, प्रचारक आए हुए ने, कवि सज्जन ने, ये सारे उत्थे हाजरी भरणगे, ते दास भी 4 तो 5 उत्थे कथा जो है करेगा। सारी संगतां लई 2 बजे तो ही गुरु का लंगर चलदा रहेगा 6-7 बजे तक। तो जिन्हां जिन्हां संगतां ने जाना है, जिन्हां कोल समा, वैसे कल इतवार है, ते बाबा जी दी तरफों गड्डियां भी ते सरां दे बाहर आ जाणगियां। जिन्हां ने जाना है वह गड्डियां लै जाणगियां ते वापस भी लै आणगियां। हुण जिन्हां दा शौक होवे वह 2 बजे इत्थे पहुंचण दी कृपालता करन, बाबा जी दे ट्रक गड्डियां ते कारां बसां आ जाणगियां, वह संगतां नूं डेरे लै जाणगियां ते वापस लै आणगियां। इतना प्रोग्राम आप नोट कर लेना, फुल चुक दी शमा। वाहेगुरु जी का खालसा,
1: वाहेगुरु जी की फतेह। महला 5 मानुख बिन बूझे बिरथा आया, अनक साज सिगार बहो करता, ज्यों मृतक ओढ़ाया। मानुख बिन बुझे व्यर्था आया, अनक साज सिगार बहो करता, ज्यों मृतक ओढ़ाया। रहा ताए ताए कृपण श्रम कीनों,

सेवा ये तो ही काज ना आया कारया भरण सवार सिज्जा कामन थाट बनाया सांग ना पायो अपने घर ते पेख पेख दुख पाया सारो दिन से मजूरी करता तो मुसला कराया खेल पहु बेगारी न्याय कर का काम ना आया पहु अनुग्रह जाकाओ प्रभु को किस हृदय नाम वसाया सार संगत का